आज तक करवा ली मैंने, त्वचा जो सांवला था। देश किया अपनी कलम को जब जिस्म में